0: गोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू।

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चौकिया
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्तेल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजाई ओखलढुंगा
1: सम्पर्क नम्बर 037590222 9852880022 र 9842880300

संस्कार और संस्कृति की वो मान्यता सबने दूसरी सके आजकल आत्मता यति कार्पेटले हो विगत तीन दशकदेखि सुर्दो साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सनु होला यति कार्पेट कार्पेटको शहनशाह

0: चार पर्व में यूरो पेंट प्रस्तुत कर रंगीन से घर बरसी उपहार रु 50,000 को यूरो पेंट को खरीद में पाऊ बाकी जो कूपन पाओ 3 बजे एसी 1 साल डबल डोर फ्रीज इंडक्शन चूलो राइस कुकर वॉल क्लॉक बम्पर प्राइस में पाओ एक जोड़ी को लगी बाली टू यूरो पेंट घर मात्र रंगाउन सपना बनी
1: चोड़ को काख
2: स्वच्छ सुंदर संयुक्त प्रकृति
1: शांति र आनंद को अनुभूति
2: टाड़ा
1: शहर नजीक
2: तपाईको स्वागत र आतिथ्यका लागि सदैव तत्पर
1: झुले अर्गानिक फार्म रिजोर्ट
3: विस्तृत जानकारी का लागि फोन नंबर 9816 49 56 63 र 9841 29 54 81 वेबसाइट झूले.com.np

不怕的怕哟喂，让带他路口，让高跨的也在发力，梦高怀念，祝你来苦的战斗发力。यो चाड़ पर्व में यूरोपेन्स प्रस्तुत गर्दछ रंगीन सर वर्षिंस उपहार रु 50,000 को यूरोपेन्स को खरीद में पाउनुहोस् लकी ड्र कूपन अनि पाउनुहोस् 3 वर्ष एसी 1 डॉलर डबल डोर फ्री।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Time check. Solo FM. Studio time.
4: It's 7 p.m. Saatko saat baje.
5: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुन्डा नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु